दरअसल जदों जथेदार साहब ने इन्हां नूं पंथ दोखी दस के वीडियो नूं असल करार दिता तां उस तों 48 घंटिआं बाद एक रिपोर्ट इन्हां ने जनता कीती सी। वैसे क्या कि 2 लैबां दी रिपोर्ट आ, क्योंकि उहदे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस पन्नू साहब आए सन ते नाल चीमा साहब सन, चीमा बाई मिलदा ते टुकड़ा दिलदा। अच्छा, उत्ते बाद की होया कि उस रिपोर्ट ते अकाली दल ने भी बड़े बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने आख्या कि एक पुलिस ऑफिसर दी बकायदा ड्यूटी लाई गई ते सुखबीर सिंह बादल होरां ने ते एक ऑफिसर का नाम तक लिया सी कि मैं उसनू फोन किया ते उसने आख्या मैं गुड़गांव च आ। हुण जिहड़ी ओह रिपोर्ट आ, उस रिपोर्ट के आधार ते भगवंत मान ये आख रहे ने कि तुसीं वेखो ना ते शरीरक बणतर मेरे नाल मैच करदी है ते ना ही जिहड़ी रिपोर्ट आई है वह मेरा होण दा तसदीक करदी है। मतलब कि वीडियो हो सकता सही होवे पर वीडियो दे विचला बंदा सही नहीं है। सुखपाल खहरा ने नवे सिरे तो यह खुलासा किया है कि दरअसल वो जिहड़े लैब वाले आ उन्हां नूं ही पुलिस ने घेर लिया। ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि भाजपा सरकार है, नायब सैनी तुहानूं पता मुख्यमंत्री है, नायब सैनी पंजाब दे विच बहुत ज्यादा एक्टिव ने। गल वेखो किधर दी किधर नूं तुर रही है ते कहिंदे कि वो जिहड़े लैब वाले आ वो मन गए कि सानूं पैसे दे के एक पुलिस अधिकारी ने यह रिपोर्ट बनवाई सी गई ते खहरा साहब दे कह लो कि खुलासे है। ते वो कहिंदे कि बकायदा एक जिहड़ी चैट कन्वर्सेशन जिन्हों आप आने हैं ते वो भी अधिकारित तौर पर सौंप दी गई है जांच करता की। ये अपने आप के विच बड़ा वड्डा खुलासा, पर खुलासे दे हेठां सुखपाल सिंह खहरा ने लिखा है कि जे मैं गलत हाँ तो सरकार मैनू चैलेंज करके दिखा। इंटरेस्टिंग गल ये आ कि ये खुलासा कल बाद दोपहर होया ते अज तुसी वेखो कि 6:05 हो गए ने सवेर दे, किसे ने भी आम आदमी पार्टी सरकार चो सुखपाल सिंह खहरा नु चैलेंज नहीं किया कि भाई तुहाड़े तत्थ जिहड़े गलत आ। बड़ी मतलब कि एक रोचक मोड़ ते पहुंच गई है पंजाब की राजनीति। वो की रहा है इधर, तुहानूं पता है अकाल तख्त साहिब दे जथेदार साहिबान ने सिख विधायकां नूं मंत्रियां नूं तलब कीता होया है। मनप्रीत सिंह इयाली तो लैके ते कांग्रेसी विधायक उन्होंने आख्या सी ते नमाने सिख वजो जावांगे। हुण आम आदमी पार्टी का जिहड़ा तंत्र आ वो ते कहिंदा कि जथेदार बादल परिवार दे बिठाए पिट्ठू है। क्यों? क्योंकि जथेदार साहब इस मामले दे विच कोई ढिल नहीं कर रहे। तुहानूं याद होना है कि उन्होंने ते मुख्य मंत्री जदों तलब होए जनवरी दे विच उन्होंने वीडियो जनता कर दी, वीडियो जिस वेले जनता कर दी ते मैं उहदे ते लिखिया कि मैनूं लगता है कि इस तरह संस्थावां नूं वीडियो किसी का भी कोई स्पष्टीकरण जिहड़ा उह जनता नहीं करना चाहिए। और तुसीं कमाल मन्नोगे कि विद इन फ्यू मिनट्स मैनूं सैक्रेटरीएट तों बकायदा फोन आया। नहीं तो आम तौर पर पत्रकारों की लाइफ च एडा क्विकली कोई बंदा स्पष्टीकरण नहीं दिंदा। तो उन्होंने कहा कि देखो असी लीक नहीं की वीडियो जनता की है क्योंकि मुख्यमंत्री साहब मुकर रहे हैं वार बार बयान, असी जनता की है। तो मतलब तुसी अंदाजा ला लो कि किन्ना ज्यादा इस मामले के विच सरगर्मी नाल काम किया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी का जिहड़ा तंत्र है वह जथेदार साहबान के उत्ते सवाल चुक रहा है, पर कमाल की गल ये है कि उन्होंने तलब किया होया इन्हों। हुण जिहड़े आम आदमी पार्टी सरकार च बैठे पूरन गुरसिख ने जां सिख ने, चाहे वह विधायक होण चाहे मंत्री होण, उन्हां दी अड मतलब कि दिमाग की वंजली वजी पई आ कि करिए तो करिए की, जे नहीं जाते तां भाई पंथ वालों खतरा, जे जाने हैं तो केजरीवाल वालों खतरा। मतलब कि हर पासे दुविधा शशुपंज, हर पासे दवंद है कि भाई की किया जाए की ना किया जाए। लिहाजा हुण आपां वेखांगे 29 तरीक वास्ते इन्हां दी तलबी हैगी आ, जबकि कांग्रेस अते जिहड़े अकाली विधायक हैगे ने उन्होंने तो साफ कर दिता है कि भाई असीं जावांगे, पर इत्थे शशुपंज हैगा। हुण देखो जिहड़ा वीडियो दा मसला है, वीडियो दे मसले च की है कि सफाई देंदे देंदे आप ही फस गया है। अक्तूबर च वीडियो आई,

0: ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 403-404-3500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
1: अपने घर का दूजा ना आया सुकून ते कैनेडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती।
2: घर खरीदने तो पहला इत्मीनान नाल किसे प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ।
1: वधिया घर खरीदना पैसे बचाने ने सिरदर्दी तो भी बचना ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह गिल।
2: सिर्फ घर खरीदने ले ही नहीं बल्कि बेचना भी होवे ता बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल।
1: घर खरीदने ते वेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस।
2: ਯੋਗ ਰਿਐਲਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-617-1868।
1: ਜੇਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ mandeep.realtor।
2: ਮੈਕਸਵੈਲ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਰਿਐਲਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 403-617-1868।
0: ਵਾਸੀਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਰਿਜ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਇਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਵੈਲਕਮ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ। ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 587-617-4696 587-617-4696। ਓਇਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। 587-617-4696।
3: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइना नाल भरिया है इना दा शोरूम। अज ही इना दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
1: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
2: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
1: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
1: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू,
2: तीजी लोकेशन 570-6520 फॉल्कनरिज बुलेवार्ड,
1: चौथी लोकेशन 606 सिटीस्केप स्क्वायर,
2: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
1: छेवी लोकेशन 400-45 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
1: 403-835-2222।
2: रेडियो सरसंगम 94.7 FM सुन रहे सारे श्रोतियां नूं कुलदीप सिंह वल्लों सति श्री अकाल जी। अज दिन सोमवार जून महीने की 22 तरीक सन 2026 हुण तो लैके 5 बजे तक मेरा ते आप जी का साथ रहेगा। अज दे इस प्रोग्राम विच असी खबरां पेश करांगे, मौसम की भी गलबात करांगे। इस तों अलावा 5 to 6 बजे सवलीन कौर जसड़ प्रोग्राम लैके हाजिर होणगे, 8 बजे अमृत बराड़ जी प्रोग्राम पेश करनगे, ते रात 9 बजे पंजाब तों जतेंद्र पन्नू जी नाल प्रोग्राम पेश किया जाएगा। ये साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उहनां दा वेरवा। अज दे इस प्रोग्राम विच सब तों पहलां असीं गलबात करदे हां जी मौसम दी। इस वेले

0: फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दिया दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जा सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन ता जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार
1: नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस एना ही नहीं एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट स्वीट भी बनाईया जा सकदियां ने बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो इमे नू 403-617-2111 ते ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है
2: ਵੇ ਜਿੰਦਰਾ ਮੈਲ ਆ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਐ
3: ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ
4: ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ JFS ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ JFS ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ LMIA ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਅਪੀਲਸ ਕਾਲ 403-436-6000 ਔਰ 403-406-2004
5: The time is 6 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.